ओके जी, लाइव शो लाइव प्रोग्राम नोटेशन कस्ट मेड एक्सो पाकिस्तान से सुकाल के वाले शेप से फरनो से तो रेसेट पाइन से 11 400 टिची

वो छे कांटे तो नसीब में आने हैं, कांटे तो नसीब में आने ही थे। हमने यार भी तो गुलाब जैसा चाह चुना था। जय न मन रो नेस्तान खा मन न खोरे खुशहाल लाला जाना अस्सलाम वालेकुम टेंशन बेटे मसी शेजवान यूज की लाला जाना बहुत लाजवाब रिजल्ट है लाला जाना आपको कामयाब करिए महीन फ्रॉम टाइम लाला जाना डॉक्टर सर हमें सुध और साबिय को और बाकी मेरे वेहन को सलाम महीन फ्रॉम टाउन वालेकुम सलाम पूरे खुशहाल अच्छी बताया कि इसका नाम और नोटेंशन मीट मसी फेस वॉश है। बहुत हंसनी आई भाई, 2 बजे सिग्नल बिल्कुल काम नहीं कर रही, बहुत हंस आती है रुबाब कोई नहीं शुमा खुरिशा खबर सर पोई ने शुखा सुबह जी डी रमन उम्मीद में दादी जी जिसे हम मिले सी शब्द मिली हुई हसी ओके जी चरता है हम दलते हो हसी तास हम रस मुंग सरे हो से अस्सलाम वालेकुम भैया संगे जी वेलकम टू द नो टेंशन ब्यूटीफुल शो आपको स्पेशल सलाम सब नो टेंशन सिस्टर को सलाम शाजी अमर बताओ ओके सी जिनब गंडपुर बाई द गजल और तखपल जबरदस्त आवाज के वजह से किसला बंद वेद मई खाने वाह वाह वैसे किसला बंद वेद मई खाने वो सखी किसला बंद वेद मई खाने वर लाख खुदे बनकड़े ने दे तो वे सखी सलाम बंद वेद मई खाने वर लाख खुदे बनकड़े ने दे तो वे उसी के दरबान हजत नष्ट घुसे के दरबान खजत नष्ट होते हंसे हम सारे मद घुसे शायर पता नहीं ख्याल अतल नहीं होकर चाह देसी बदल पड़ के राशि जुड़ता राख ले तल पड़ के राशि जुड़ता राख ली खावा चरता रह ले पे और खुश भाई मशमा हसीना गुल डे नीमा खोर से सनागे शाये मनना हसीना प्रोडक्ट्स खाली फेस वॉश न दिए नोटेंशन फॉर्मूला क्रीम हम दी वर्षरा नोटेंशन शैम्पू हम दे वर्षरा खुश भाई नोटेंशन शैम्पू हसीना गुल पले से मलवी जगह निवले दो माशाल्लाह अल्लाह दे हसीना गुल फिर समय हसते दी हसीना बिल्कुल नोटेंशन शैम्पू ना बगैर सर सफक हुई ना वाह ये ना मनना जिमो खोर से दी खुशहाल हमेशा ये ना मनना भाई सबीर बाबीर भाई साबेरा दस तस लिख ले साबेर दी किसी में लिख ले अच्छा सबीर भाई भाई सबीर भाई ने तो वैसे भी साबिर बजी दे साबिर अली के लिए हाँ साबिर मैंने वैसे भी नोटेंशन प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए मैं चूट पर रखे थे मुझे नोटेंशन प्रोडक्ट्स ने रिजल्ट जिसको नोटेंशन प्रोडक्ट ने रिजल्ट नहीं दिया मुझे पैसे दे दो मैंने 40 शैम्पू 30 फेस वॉश 15 ब्यूटी क्रीम 20 ऑयल यूज किए हैं इसकी खुशहाल जरूर मालिक।

जनाब, ये छोटी सी मोहब्बत हमने आप लोगों के साथ बांटी है और कैसे ऐसे गिफ्ट तहफ अपने कस्टमर्स को देता रहता है जनाब, तो ये भी हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है जो पहले हमारी ये ऑफर थी शबरा उस्ताद के नाम तीनों FM से मुकुल अंदाजी के अगले महीने भी इसी तरीके से अंदाजी करेंगे। सामने कराम कैसे नेचुरल पाकिस्तान की बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोगों के पास मौजूद है जो की बहुत ही प्रीमियम क्लास की बनी हुई प्रोडक्ट है, रिजल्ट फुल प्रोडक्ट है। उन्हीं प्रोडक्ट के अंदर हमारी एक प्रोडक्ट जनाब, जिस प्रोडक्ट का नाम है जनाब केसन जोड़ी। हाँ जनाब, केसन जोड़ी बोलते हैं ऑयल और शैम्पू का जो पेयर है, ठीक है जनाब। यानी कि हम कहते हैं कि अगर आप हमारा ऑयल, जिसको हम बोलते हैं केसन हेयर ऑयल और केसन शैम्पू, जब एक साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जनाब, जब एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑयल तो हमारा खरीदते हैं लेकिन शैम्पू वो इस्तेमाल करते हैं जो घर के अंदर राशन में आता है। हर महीने राशन के अंदर जो शैम्पू आता है उसी को खवातीन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई, अगर आपने बालों को हकीकी अपना ड्रीम पूरा करना है, हाँ जनाब, अगर आपने अपना ड्रीम पूरा करना है, बालों का जो आपका ख्वाब है उसको आपने साकार करना है, उसको आपने हकीकत का रंग देना है, तो आपको केसन जोड़ी का इस्तेमाल करना होगा। केसन जोड़ी यानी ऑयल और शैम्पू का जो पेयर है, जो जोड़ी है, ठीक है जनाब, ये बेसिकली 100% नेचुरल अज़ा से बनी हुई। अच्छा जी, हमारी एक मूवी आ रही है केसन फिल्म्स के तावन से, केसन 10 तरस, ठीक है जनाब, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और ये AI मूवी है और इस मूवी को बनाने का मकसद क्या है, क्यों हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों ने स्टेटस पर देख ली होगी इसकी क्लिप्स, ट्रेलर्स देख ली होगी जनाब, इसमें बहुत कुछ खास है। इसमें आपको आप जब ये पूरी मूवी हमारी देखेंगे, 10 तरस के नाम से आ रही है, तो आपको समझ आ जाएगी कि केसन क्या है। और आप जो ऑयल लगा रहे हैं, जो शैम्पू लगा रहे हैं, जो हमारे फेस वॉश लगा रहे हैं, जो ताकत प्लस खा रहे हैं, जो वेट कम पेट कम खा रहे हैं, जो शिफा दर्द लगा रहे हैं, जो ग्लूटावाइट क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नाइट क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मिल्की साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जफरानी साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हाजमा कंट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस तरीके से बनकर और कैसे अंदाज से बनकर ये आप तक पहुंचा है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत जल्द ये मूवी देखने को मिलेगी हमारे चैनल के ऊपर।

0: जी जनाब, आज आप मुझे लगता है कि बात नहीं करने देंगे जनाब। आप लोगों की कॉल जो है वो शुरू हो गई। चलो जी, आप लोगों की कॉल ले लेते हैं एंड देन उसके बाद आज ना फिर आप लोगों के साथ मजीद बातें करेंगे कि भाई केसन की जो कहानी है खूबसूरती की, वो ऑयल और शैम्पू के गिर्द क्यों घूमती है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जनाब, कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना मोहतरम?
1: जी मेरा नाम अब्दुल वहाब है, बनकुरई से बोल रहा हूँ।
0: बनकुरई को लेने पेन सारे मीठे बिरावा तो तुसा सरह की लेने हो सो सही है जी।
1: जी सुनाओ जी, अल्हम्दुलिल्लाह तुसा हाल ले हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहली दफा तुम्हारी आवाज सुनी है, पहली दफा सारे प्रोग्राम भी चाहे लगता है में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, पहली दफा कॉल कीजिए, पहली कॉल है।
0: तो प्रोग्राम कितने अरसे को मेरा बिराह सुन दवा थे सारा प्रोग्राम के संदा?
1: प्रोग्राम थोड़ा सर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई साल खान थी के सुनते वे।
0: साल खान थी के तो सिर्फ प्रोग्राम सुनते वे या जेब च पैसे कट के केसन दी कुछ घिनण ते भी दिल थी है तोड़ा?
1: जरे माशाल्लाह तुसा प्रोडक्ट बसेंदे वे अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी ऐसा घिने।
0: अच्छा जी, केरी प्रोडक्ट तुसा आजकल इस्तेमाल करे?
1: सिरप घिने, सेरिसिड।
0: हाजमा कंट्रोल सिरप सेरिसिड?
1: जी।
0: पहली दफा इस्तेमाल किए हुए या पहले भी इस्तेमाल करें?
1: नहीं पहले कर इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा जी, कि मैदे दे मसले, पेट दे मसले, पेट दा दर्द, गैस, तेजाबियत, सीने दी जलन, ये सारे चीज खत्म थे थोड़े से?
1: बिल्कुल बिल्कुल थे, बड़ी बेस्ट है माशाल्लाह।
0: ते कीमत वाइज कि बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं, वो बेहतरीन
0: प्राइस माशाल्लाह, कीमत बड़ी मुनासिब कीमत है। किस्म का सिरप है, 250 कल घट के कंपनी का ना मिल सी, ये सारी तरफ तो यकीन करो गिफ्ट शुदा प्रोडक्ट है कि ऐसा ऐसी प्रोडक्ट, हालांकि ये बहुत ज्यादा विकन वाली प्रोडक्ट है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हाजमे का शिकार इन, हाजमे की खराबी का शिकार इन। ठीक है सर,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कंपनियां बहुत सारे पैसे कमाते इन प्रोडक्ट उ, लेकिन असा बहुत सारा कमाते पे अल्हम्दुलिल्लाह। बेवी बहुत सारे प्रोडक्ट इन सर, बई कई शे इस्तेमाल कर रहे शहजादे?
1: बई सारे को मालूम बात करें तो जो मुंह देते चेहरे पे बाहर धब्बे इन छाइया
0: उम्र दसो, उम्र केरी है सही?
1: उम्र तकरीबन 22 साल है।
0: 22 साल है उन्दे वास्ते तुहाडे कोल ऑप्शन डू मौजूद इन सारी ही ग्लूटा वाइट क्रीम है। ठीक है सही, ग्लूटा वाइट क्रीम तुहाडे बनकुरई दे विचकार इल्ताफ साहब इन इल्ताफ भाई सवेरे शो दे गल की थी पहन के मैं ग्लूटा वाइट क्रीम घर लाने वास्ते घर गिन के गया ते इवें जो 7 दिन दे विच सारे चेहरे दे दाग दबे खत्म थी गए। तुसा उन्हां दे कुपकारी इल्ताफ भाई ते उन्हां दे भाई दूजे भाई ओ भी कारी साहब। ठीक है सही, ता ओ हिक तुहाडे अपने इलाके दे बंदे जे हिक शाही इस्तेमाल कीती खड़े ना पे। ठीक है सही, हां जाफरानी क्रीम ही सारी है भाई। ठीक है जी, जाफरानी क्रीम, नाइट वाली क्रीम इस्तेमाल करो या केसन दी ग्लूटा वाइट क्रीम इस्तेमाल करो, ये दोनों चीजें
1: सारे इस्तेमाल की थी उस पे फर्क नहीं आया ना।
0: अच्छा, उको कितना इस्तेमाल किया है तुसा?
1: उको तकरीबन 2-2.5 महीने इस्तेमाल करेंगे, नहीं फर्क आया।
0: 2-2.5 महीने तुसा ग्लूटा क्रीम इस्तेमाल की थी?
1: एक ही नहीं, फर्क नहीं आया बिल्कुल।
0: कितने डब्बे लाए तुसा 2-2.5 महीने दे विच?
1: तकरीबन
0: 4-5 जब मसला है वो तो बहुत गंभीर किस्म दे, क्यों कोई एक्सीडेंटल निशान इन या कोई बेईम निशान स्किन वाले निशान तो इतना टाइम नहीं लगता होंगे
1: जी। बात दाग इन दाग दाग दिल के दाग इन के दाने निकाला
0: नहीं, मैं तो पूछना चाहना दाग धब्बे जेरे हिन ओ एक्सीडेंट बाजुकात कोई छुरी दा निशान, कोई एक्सीडेंट दा निशान, कोई इन किस्म दा निशान होंदा ना, ही कौन है कि दान निकले तो तुहाकू निशान बन गया या इवे दाग धब्बे थी गए? मामूली दाग धब्बा इतना टाइम नहीं लग सकता, कदा भी नहीं लग सकता।

में सबसे सस्ती क्रैक रिलीफ क्रीम जो है वो केसर नेचुरल पाकिस्तान की है जी। ठीक है जनाब, आप अपने इलाके में जहां जहां आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, पहाड़पुर में, टांक में या डेरा में, करीबी दुकानदार के पास जाएं और हमारी इन क्रीमों के हवाले से इन्फॉर्मेशन लें, आपको सारे प्रोग्राम मिलेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अजहर पहाड़पुर से हैं और कहते हैं कि जनाब वेट कम पेट कम का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है जनाब, वेट कम पेट कम का रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। और ये अजहर भाई हमारे साथ बहुत रेगुलर लिसनर हैं जो हमें हर रोज सुन रहे होते हैं जनाब, और हमारे साथ फीडबैक बहुत कम शेयर करते हैं हमारे साथ, लेकिन आज हमें बता रहे हैं कि भाई आपकी जो वेट कम पेट कम है वो बहुत ही जबरदस्त है। सिर्फ वेट कम पेट कम नहीं जनाब, आप ताकत प्लस को इस्तेमाल करेंगे तो सौरों की तरह दीवाने हो चुके होंगे जनाब की क्या ये अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप जो है शिफाए दर्द इस्तेमाल करेंगे, मिंबर शाहजान की तरह कहेंगे सुकून है तो जनाब शिफाए दर्द के अंदर है। ठीक है जनाब, और अगर हाजमा कंट्रोल पियेंगे तो भाई जिस तरह बनकुराई वाले बता रहे थे कि अमेजिंग किस्म का ये सिरप है जो हमने हाजमे को कंट्रोल करने के लिए बनाया। शाहजान पंजाब से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू सो वेरी मच। शंजार उमर वाली कोर्ट से हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग ऐसा दिल तोड़ते हैं, अच्छा जी कौन है, कुछ लोग ऐसा दिल तोड़ते हैं कि दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिल ना हुआ शीशा हो गया। सलाम सलाम मिस्टर केटीए, कैसे हो? आई एम आपकी बहुत पुरानी उदास सी लिसनर इफ्रा महसूद है जी। इफ्रा अभी महसूद, इफ्रा जो है वो भी सैड होती है यार, तो बड़ी चुलबुल सी लड़की होती थी, हमारे शो की रौनक और हमारे शो की तरोताजगी जब हमारे जो है ग्रुप्स होते थे, अनारी ग्रुप, एनफ्यूज ग्रुप, और उनके अंदर ये मोहतरमा पाई जाती थी जिनको हम प्यार से इफी कहते हैं, और ये हैं जनाब इफ्रा महसूद एंड प्यार से कहते हैं इफी जान जी। बिल्कुल, ये नाम हमने इनको केसन घर के अंदर दिया था इफी के नाम से, और इफी जान हो गई हैं जनाब। एंड मेरा दिल बहुत उदास है, मेरे सब दुआ करें। एंड पहाड़पुर वालों मेरी तरफ से सलाम एंड बेवफाओं को सलाम एंड केटीए जिंदाबाद। अच्छा जी, ये तो भाई आज आपने हमें सैड कर दिया कि इफ्रा जो है सैड है, बहुत अरसे बाद मैं यकीन कीजिए। अजी बहुत सारे लोग हमारे शो में आते हैं और फिर चले जाते हैं, जैसे खुशी इनकी पहाड़पुर में होती है, खुशी के नाम से ये मैसेज करती थी, बहुत ही शरारती किस्म के मैसेजेस होते थे इनके शो के अंदर, हम पढ़ते थे, और जो है वो भी है मैं, लेकिन मुनासिब नहीं लगता लिसनर्स का नाम लेकर उनको बुलाना, लेकिन ये नहीं होता कि हम उनको मिस नहीं करते कि जब वो हमारे शो का हिस्सा नहीं होते या हमारे शो में नहीं आते। जैसे इफी हमारे शो में नहीं थी, यकीन करें इनकी कमी महसूस होती थी, लेकिन अल्लाह ताला हर किसी के अब ये इन्होंने बड़ा सैड सा मैसेज किया है, हर किसी के अपने मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इनको हम ढेर सारा वेलकम करते हैं केसन शो के अंदर। एंड केसन घर के अंदर खुशियां हैं जनाब, यहाँ पर मुस्कुराहटे हैं, यहाँ पर प्यार की बातें हैं, यहाँ पर सेहत की बातें हैं, यहाँ पर हंसने वाली बातें हैं। तो अगर आप केसन के शो के अंदर आ गई हैं तो आपकी जो है सैडनेस जो है वो हम दावा करते हैं कि खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द आपकी सैडनेस जो है वो हम खुशी में बदलेंगे। और एक दफा फिर से हम पुराने वाली इफ्रा को देखेंगे भाई, हंसते मुस्कुराते हुए, ना सिर्फ खुद हंसते मुस्कुराते हुए बल्कि लोगों को भी हंसाते हुए और शो का रौनक बढ़ाते हुए जनाब हमारे शो में रेगुलर आएंगी, अगर इनका दिल जुड़ गया तो। आजकल दिल भी बड़े टूट रहे हैं यार, है ना, और दिल जुड़ जाते हैं क्या या नहीं जुड़ते, जुड़ने की कोशिश करें तो जुड़ जाते हैं। ठीक है जनाब, माजी को माजी का हिस्सा बना दें, इग्नोर कर दें, माजी को कभी भी साथ लेके नहीं चलना चाहिए। माजी यकीन जानिए वो जंजीर है आपके साथ, अगर आप इससे जान नहीं छुड़वाते ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आप माजी से जान नहीं छुड़ाते, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, अगर ये होता, अगर वो होता, काश ये हो जाता, काश मैं ये कर लेती, काश मुझे ये मिल जाता, अगर आप ऐसा करते रहेंगे ना, यकीन जानिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कदम बढ़ाएं, कल की बात एक जुमले के साथ कल की

फा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। मोबाइल नंबर यहाँ दरसरा नोट को 0319552304 अल शिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी।

0: कौन है जो सॉन्ग की फरमाइश करते हैं, भाई कितनी मजे के सॉन्ग लगाते हैं, भाई ऐसी फरमाइश पूरा ना कर, किसी की फरमाइश पूरा ना करवाए मन अला शाशा बेफिक्र अति उल्लास से बदशी ग्रंथ नजबान में तथा सुवाड़ा स्टाफ से सलाम वालेकुम सलाम ओ जितान बेचे भाई मरवत
1: आलात में खगो
0: वजह थाना खुशाल।